मातृवंदना सुनने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जी जयालाल व साथियों के स्वर में ये पहला भजन।

0: अनुपमा देशपांडे के गाए भजन के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, छोटे और मध्यम किसान ब्लॉक रोपण के अंतर्गत 50x2 मीटर या 100x2 मीटर क्षेत्र में खेत के किसी किनारे या चारों तरफ 50x50 सेंटीमीटर या 50x100 सेंटीमीटर की दूरी पर सुबबुल के 200 से 400 वृक्षों का समावेश करके दूसरे वर्ष से ही ईंधन, बाड़ सामग्री और चारा लगातार कई वर्षों तक प्राप्त कर सकते हैं। रोपण के एक वर्ष बाद सुबबुल 4 से 5 मीटर वृद्धि कर लेता है। आवश्यकता के अनुसार दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ष से कटाई की जा सकती है। काटने के एक सप्ताह पश्चात कल्ले निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनकी संख्या 30 तक होती है तथा इनकी बढ़त नए रोपण से अत्यधिक तेज होती है और ये 50 से 60 दिन के बाद 2 से 3 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। इनको आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, जैसे चारा के लिए इन्हें पुनः काटा जा सकता है और इस तरह 60 दिन के अंतराल पर वर्ष पर्यंत हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। कल्लों की संख्या 8 से 10 तक सीमित करके एक वर्ष बाद काटने से बाड़ सामग्री, जलाव ईंधन के साथ ही चारे की भी प्राप्ति हो सकती है। सुबबुल पशुओं के लिए सरस, पचनीय और पोषक तत्वों से भरपूर चारा है। अनुसंधान के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि चारे में सुबबुल की मात्रा 30% से कम रहने पर पशु लंबे समय तक माइमोसिन के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं, जबकि 50% से अधिक मिलावट पर पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सुबबुल के चारे को हरे रूप में सुखाकर, लीफ मील बनाकर या साइलेज के रूप में पशुओं को खिलाया जा सकता है। सूखी सुबबुल की पत्तियों को ल्यूसर्न, बरसीम, जई आदि के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाने से पौष्टिकता के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है। किसान भाइयों, सुबबुल भूमि सुधार के लिए बहुउद्देश्य वृक्ष है। ये भूमि की कड़ी परत को तोड़ने, मृदा में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने, नमी संरक्षित करने और मृदा को तेज धूप, बारिश और तेज हवाओं से बचाने के लिए भी काम करता है। सुबबुल रोपण के अल्प समय में ही अपनी जड़ें गहराई तक कर लेता है। इस तरह सूखे के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी कटाव को रोकने के लिए भी ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। किसान भाइयों, सुबबुल में कल्ला बढ़ाने की क्षमता अत्यधिक ज्यादा है। सुबबुल के किसी भी उम्र में काटने पर कटे हुए भाग से कल्लों का निकलना एक सप्ताह के अंदर प्रारंभ हो जाता है। नए कल्लों को सुव्यवस्थित जड़ तंत्र उपलब्ध होने से उनकी बढ़त अत्यंत तेज होती है और 60 दिन के अंदर 3 मीटर तक ये बढ़ जाते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि आप कई बार इसकी कटाई कर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करा सकते हैं। खाली, परती भूमि, बंजर भूमि, हल्की और मिट्टी कटने के डर वाली भूमि में सुबबुल का अगर आप रोपण करेंगे तो जहां एक तरफ चारा

0: ईंधन, लकड़ी आदि की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार के अन्य अवसर भी मिलेंगे और इस तरह से लोगों का आर्थिक स्तर भी ऊपर उठेगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्व क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सिंधु ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर आज दिन में 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी बृहस्पतिवार 14 तारीख को प्रातः 8 बजे कैम्बल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडवे स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी रानी लक्ष्मी मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी गुरुवार 14 तारीख को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

0: एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी गुरुवार 14 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और आज कार्यक्रम का शीर्षक है वादियाँ। दोस्तों, वादियाँ दिल को सुकून देने वाली होती है, जो हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास कराती है, जिसकी सुंदरता को देखकर हमारा मन बिल्कुल तरोताजा हो जाता है।

दोस्तों, ये हंसी वादियाँ किसी जन्नत से कम नहीं होती। जहाँ तक नजर जाए, इन वादियों की खूबसूरती हमें अपनी आगोश में बुलाए।

दोस्तों, इन वादियों की खूबसूरती को निहारते निहारते मन करता है काश वक्त का पहिया यहीं रुक जाए और हम इसकी खूबसूरती में कहीं खो जाएं।

0: दोस्तों, अब इंद्रधनुष कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी तेरेसा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 236वीं कड़ी।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं, और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान की 236वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं, आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में श्री ए इलांगो योग प्रशिक्षक से भेंटवार्ता होगी। विषय रहेगा खेल खिलाड़ी और योग। भेंटकर्ता होंगे शिबू जॉर्ज और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए अनुराधा पौडवाल, चंदन दास और महेंद्र कपूर को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तरहाने सुहाने का। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय होगा दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1282 कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रगीत। दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में चंदन दास और हरिहरन को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर। दो बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारे कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह को आप सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में पशुपालक महिला से भेंट, इस विषय पर श्रीमती निर्मला खजूर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार होगा शाम 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। सुगम संगीत में 7:20 पर

0: श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयास हि भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः। तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात्, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्ड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2017 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्ड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविधक्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपादलस्य नेता हिमन्त विस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये

0: तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 26.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 0.92% तथा न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:56 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:35।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सात बजकर 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में श्री ए इलांगो योग प्रशिक्षक से भेंटवार्ता होगी। विषय होगा खेल खिलाड़ी और योग। भेंट करता होंगे शिबू जॉर्ज और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए अनुराधा पौडवाल, चंदन दास और महेंद्र कपूर को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का। नौ बजकर 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन सकेंगे। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ शेष कार्यक्रम।

0: धूप में बाहर जाने से बचें, शरीर को ढकें, ढीले एवं हल्के रंग के कपड़े पहनें।
1: धूप से बचाव के लिए छाते का प्रयोग करें।
0: पर्याप्त तरल पदार्थों को लें।
1: दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से

0: हीट स्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जनहित में जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत द्वीप समूह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नवीनीकृत ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ग्राम पंचायतों में आज से विशेष आधार शिविर आयोजित कर रहा है और जहाज MV स्वराज द्वीप 14 मई को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा।

का आयोजन किया जा रहा है। एक वर्ष तक चलने वाला ये राष्ट्रीय समारोह है जो 11 जनवरी 2027 तक चलेगा। ये ऐतिहासिक अवसर 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने और मई 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण तथा उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कल एक राज्य स्तरीय स्वाभिमान पर्व आयोजित किया गया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई जो फ्लैग पॉइंट स्थित अय्यानार मंदिर से शुरू होकर मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में संपन्न हुई। कार्यक्रम में सांसद विष्णु पद्रे, मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार के अलावा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस पर्व में सोमनाथ मंदिर में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए। शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा ने राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक नए और नवीनीकृत ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य द्वीप समूह में छात्रों को आधुनिक और व्यवहारिक सीखने का माहौल प्रदान करना है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक और छात्रों ने भाग लिया। अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप होने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने कहा कि इस नए ब्लॉक का जुड़ना स्कूल के विकास के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर और उपाध्यक्ष आशा मांझा हल्दर और पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने कल मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार से मुलाकात की। इस दौरान जिला परिषद से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और चल रहे गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर कल टैगोर राजकीय शिक्षण संस्थान के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माई भारत के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 125 युवाओं, छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक प्रकाश खुले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने 1998 में डॉ. APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए सफल पोखरण परमाणु परीक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दूरसंचार प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर जागरूकता और युवाओं के बीच प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की। संस्थान की प्रधानाचार्य डॉ. मंजुलता राव ने छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और डिजिटल शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है शिविर और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर आयोजित कर रहा है। ये शिविर कालीकट और शहीद द्वीप में आज और कल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके अलावा ये शिविर छोलदारी, नमूना घर, फरारगंज, कन्यापुरम, शोलबे, नानकौड़ी, कचाल में भी आयोजित किया जाएगा। विभाग ने सभी से इन विशेष आधार शिविरों का लाभ उठाने को कहा है। जहाज MV स्वराजद्वीप 14 मई को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान चढ़ाने का कार्य कल दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा, जबकि यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य जहाज यात्रा के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा। ग्राम पंचायत विम्बरलीगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हाल ही में विम्बरलीगंज के नेताजी पार्क में एक नए मंच का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद

अध्यक्ष पी उमर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में फरारगंज पंचायत समिति प्रमुख डी पद्मावती, विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत प्रधान के वेंकटराम बाबू के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। अपने संबोधन में जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि ये नव उद्घाटित मंच इस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करके समुदाय को लाभ पहुंचाएगा। उद्योग निदेशालय की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्षीय पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सिलाई और वस्त्र निर्माण, बेंत और बांस हस्तशिल्प, बढ़ईगिरी और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दिगलीपुर केंद्र सिलाई और वस्त्र निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। लिटिल अंडमान में सामान्य इंजीनियरिंग और बढ़ईगिरी में प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, जबकि कार निकोबार में सिलाई और वस्त्र निर्माण, बढ़ईगिरी, जूट और जूट उत्पाद तथा सामान्य इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच हो तथा द्वीप समूह का स्थानीय प्रमाण पत्र धारक हो, वे इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को ₹1,000 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। प्रवेश के लिए फॉर्म जारी करने की प्रक्रिया कल से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, उद्योग निदेशालय और विभाग के विस्तार कार्यालयों में शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक संबंधित उद्योग संवर्धन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग कल से 16 मई तक भारतीय नौसेना परीक्षा 2026 आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के ई एडमिट कार्ड निर्धारित परीक्षा तिथि से 3-4 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुलिस विभाग की ओर से जारी भर्ती नोटिस के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 मई है। उम्मीदवारों के लिए कल से 19 मई तक सुधार विंडो उपलब्ध रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में आवश्यक सुधार, पद की प्राथमिकताएं, शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, तस्वीरें, हस्ताक्षर और अन्य अनुमत क्षेत्रों जैसे विवरणों को अपडेट कर सकते हैं। सुधार विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत द्वीप समूह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नवीनीकृत ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ग्राम पंचायतों में आज से विशेष आधार शिविर आयोजित कर रहा है। और जहाज एमवी स्वराज द्वीप 14 मई को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

दोस्तों, अपना देश केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, संस्कारों और त्याग का प्रतीक होता है। जब देशभक्ति की भावना दिल में जगती है, तब हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा होता है।

दोस्तों, भारत की यह पावन धरती सदियों से प्रेम, शांति और आशा का संदेश देती आई है। इसकी मिट्टी में वह अपनापन है जो हर दिल को रोशनी और विश्वास से भर देता है। आइए इसी उजाले और उम्मीद की भावना से सजा यह गीत सुनते हैं।

दोस्तों, देश को अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए पहले सुनिए खेल जगत कार्यक्रम के तहत खेल खिलाड़ी और योग विषय पर श्री ए इलांगो के साथ पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।

0: खेल जगत के आज के संक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज हम कुछ चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग के संदर्भ में आप सभी परिचित हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों को योग से मदद मिल सकती है और योग करते समय कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलती कर जाते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं श्री ए इलांगो, जो कि पेशे से अध्यापक हैं लेकिन साथ में ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इलांगो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: सभी को नमस्कार।
0: इलांगो जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये हम सभी जानते हैं
1: जी,
0: और आज ये बात सिद्ध हो चुकी है, सभी से मान चुके हैं।
1: सही बात।
0: जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है, तो उनके लिए योग किस तरह से उनकी मदद कर सकता है?
1: खिलाड़ियों के लिए तो योग करना बहुत ही कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो भी योग करेंगे उनको अपना जो भी जो स्पोर्ट्स होएगा, कोई भी कबड्डी हो, क्रिकेट हो, खो खो हो या एथलेटिक्स हो, वो जिसमें संबंध है उनमें से अगर उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर उनको योग करना चाहिए। योग करने के बाद उनको भी मालूम होगा कि उनका पहले का स्टेज कौन सा था और अभी उनका लेवल कितना है और उनका मनोबल कितना बढ़ता है। ये सब जो है योग से ही मिलेगा उनको, और वो जितना योग करेंगे उसके हिसाब से उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा।
0: यानी जैसे कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत अच्छा है, आपने मनोबल का जिक्र किया, तो मानसिक रूप से भी हम इससे सशक्त होते हैं, जो कि खेल और खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शारीरिक सशक्तिकरण के साथ साथ एक मानसिक बल भी होना चाहिए ताकि वो अपने स्पोर्ट में आगे बढ़ सके। कुछ ऐसे खास योग हैं जो कि खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद है?
1: कुछ कुछ योग तो ज़रूर है, कुछ योग है, कुछ प्राणायाम है जो खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाता है, और उसमें से मैं कुछ आसन के नाम आपको बताना चाहता हूँ। जैसा एक वीरभद्र आसन, शायद आप नाम सुना होगा लेकिन कैसा करना है तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी अगर आसन करना हो तो कृपया करके कोई इंस्ट्रक्टर का सामने बैठ के सीखने के बाद आप किसी को भी कुछ बताइएगा। वीरभद्र आसन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को एकदम मजबूत देता है और टांग का जो ताई मसल्स है इसमें भी बहुत
0: ताकत लाता है
1: और हाथ में भी जो है, हाथ में जो आपको जितना मसल्स है हाथ को भी एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब आसन इम्पोर्टेंट है। और एक आता है धनुरासन, भुजंग आसन, शिशु आसन जो छोटे बच्चे जैसे सोते हैं उसी तरह, और शवासन, और भी बहुत सारे आसन है जिस आसन के कारण जो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स है जो खिलाड़ी है उनके मनोबल बढ़ता है, उनका शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उनका जो लेवल है वो लेवल बढ़ाने में काम आता है,
0: कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है।
1: जी, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये बताना चाहूँगा कि अगर प्राणायाम जो है उनका माइंड को एकदम कंसंट्रेशन में कर दे।
0: और किसी भी खेल के लिए जब तक हम पूरी तरह से केंद्रित ना हो तो उसमें अपना जो अच्छा प्रदर्शन है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, वो शायद ही दे पाए।
1: जरूर जरूर।
0: तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे जो आसन आपने जिक्र किया, प्राणायाम तो खैर जानते ही हैं कि इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, तो इससे खिलाड़ियों को एक अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: जरूर।
0: लेकिन इलांगो जी, देखिए योग जैसे आपने कहा कि इंस्ट्रक्टर के सामने बैठकर एक बार करने के बाद ही उसे दूसरों को बताना और खुद करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि या तो हम टीवी में देख लेते हैं या कहीं सुन लेते हैं तो अपनी मर्जी से बहुत सारा जो आसन है वो करने लगते हैं, तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि योग करने का एक सही समय जो है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है।
1: जरूर जरूर। समय निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जब समय मिलता है उस समय करेंगे। योग करने का एक समय जो है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग, सवेरे सवेरे सो के उठिए और कोशिश करिए कि जो ब्रह्म मुहूर्त जो बोला जाता है, जो सूरज निकलने से कम डेढ़ से दो घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, उससे पहले उठ के फ्रेश होके उस बैठ जाएंगे और पहले तो आपको बॉडी को एकदम रिलैक्स पोजीशन में लेके आना है, रिलैक्स करना है बॉडी को, और आप एकदम रिलैक्स होके बैठिए। पहले शुरू करेंगे आप थोड़ा सा बस्त्री का प्राणायाम जो हमारे सांसों की गति को नॉर्मल कर देगा, इसको बोलते हैं बस्त्रिका प्राणायाम। कुछ नहीं, सिर्फ सांस को अंदर भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है। इस बस्त्रिका प्राणायाम से आपको बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक

0: पड़ता है। जैसे जैसे आपको ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगा, और आपको हार्ट अटैक जैसा बीमारी जो है वो कभी नहीं आएगा आपको। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्राणायाम है, जैसा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का अगर लाभ हम बोलेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो आपकी शरीर को सिर से लेके पांव तक का सारा बीमारी को दूर कर सकते हैं।
1: तो ये योग के साथ साथ जैसे आपने कहा कि पहला तो इसका समय जो है वो निश्चित है, मतलब सवेरे सवेरे अगर अर्ली
0: ब्रह्म
1: मॉर्निंग,
0: मुहूर्त बोलते
1: जी
0: हैं
1: हाँ अर्ली मॉर्निंग अगर इसे किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। तो
0: जी।
1: वो तो समय फिक्स है, जो लोग उसको नहीं पालन करते तो उतना जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इलांगू जी, आप काफ़ी अरसे से बच्चों को सिखाते हैं योग, क्या गलतियाँ आम तौर पर लोग करते हैं योग करते वक्त?
0: देखिए, जैसे कि एक आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है, हाथ को जमीन पर रख के आप एकदम पलटी होकर लेट जाएंगे पेट के बल पे, और हाथ नीचे रख के सामने चेस्ट को ऊपर उठाना है। इसमें सांसों की गति पे ध्यान देंगे। देखिए, आप जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, वहाँ पर रिलैक्स करेंगे, तो उस समय आपका सांस का स्थिति जो है नॉर्मल रहेगा। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, आप जितने देर ऐसा रोक सकते हैं रोक के रखिए, उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। लेकिन ये जब हम लोग सांसों की गति पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे जो है कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।
1: यानी इसमें जो भी आसन है उसमें सांसों की गति कहाँ लेना है कहाँ छोड़ना ही बहुत ज़रूरी है।
0: जरूरी है। बहुत सारे जन जो है बहुत जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, और कोई वार्म अप कर लेते हैं अपने आप में, या कोई पार्क में, हमने भी बहुत सारा जगह देखा, पार्क में भी देखा है, और कोई सी बीच में भी देखा है कि बहुत जन जो है वॉकिंग करते हैं, उसके बाद आके अपना पूरा पूरा वार्म अप करते हैं, जितना पसीना निकाल सकते हैं निकालें। लेकिन अगर सांसों की गति पे ध्यान देते हुए अगर वो सब करेंगे तो उनको 100% बहुत जल्दी ही फायदा मिल जाएगा।
1: और इसमें जो कपड़े जैसा पहनते हैं,
0: जरूर जरूर, कपड़े जो है हम कभी भी एकदम ज़्यादा टाइट फिट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आप ऐसा कपड़ा पहने कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, आप पैर को मोड़ के बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होना कि आप पैर मोड़ के बैठते हैं आपको थोड़ी देर में आपको पैर दर्द दे देता है, कपड़े के चलते आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उस तरह कपड़ा कभी मत पहनिए कि जिससे आपको कंफर्टेबल फील ना करें। थोड़ा सा लूज कपड़ा पहनिए, ताकि आपको योग करते समय आपको मज़ा भी आएगा और कपड़े से आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा।
1: बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी आसन हम करते हैं उसको उस स्टेज तक ही ले जाना चाहिए जब तक कि हम अपने आप को, जैसे आपने बताया, कंफर्टेबल फील करें। जहां हमें स्ट्रेस आता है या बहुत परेशानी होती है उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए।
0: हाँ, ये तो सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं कि अगल बगल में कोई कर रहा है तो उनका बॉडी जितना फ्लेक्सिबिलिटी है, ये नहीं बोल सकते कि हमारा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। तो अगल बगल वालों को देख के वो जितना करते हैं उतना हमें भी करना ज़रूरी नहीं है। आप उतने ही करिए आपकी जितना क्षमता है, कभी भी दूसरों को देखते हुए आप उतना बॉडी को ज़बरदस्ती मोड़ना तोड़ना नहीं।
1: तो इलांगो जी, आज आपसे बातें हुई और आपने योग के संदर्भ में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी को।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, रमैया वस्तवैया, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है प्रिया पंचल ने, स्वर बनाई है सचिन जिगर ने और गायक कलाकार है मिका सिंह और श्रेया घोषाल।

अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ें दी हैं शेखर, रजवीनी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन ने। फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गाने के बोल लिखे हैं अन्विता दत्त गुप्ता ने तथा संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

0: एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाग मिल्खा भाग से। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं शंकर एहसान लॉय, रमन माधवन और मनी माधवन ने। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टकरार का गीत। इस गीत को लिखा है माया गोविंद ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और आवाज़ें दी हैं अभिजीत और अलका याग्निक ने।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह

0: पुतिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।

0: सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।

0: अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma to be sworn in as chief.

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीरो से। लता मंगेशकर और मनहर की आवाज़ों में, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
2: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
3: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
2: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
2: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
3: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
2: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
3: धन्यवाद दीदी।
2: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for ₹10.99 lakh, with a battery EMI of just ₹3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
6: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत रचना गुलजार की और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अगला गाना जो आप सुनेंगे, इसको आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। फिल्म का नाम है बेताब, गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन, तो लीजिए सुनिए एस गोविंद राजन का गायन। इनके साथ वॉयलिन पर सिक्किल आर भास्करन, मृदंगम पर वेल्लूर रामाभद्रन, घटम पर के एम वैद्यनाथन और मोरसिन पर एम आर पकीरी सामी ने संगति की है। तो लीजिए इनका गाया। सबसे पहले सुनिए राग जय मनोहरी, जो आती ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे रूपक ताल में निबद्ध रात कल्याणी। श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म चक दे इंडिया का ये गीत। बोल जयदीप साहनी की है तथा संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म बोल से, जिसे गाया है सज्जत अली ने। बोल अली मोइन की है तथा संगीत दिया है सज्जत अली ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोयला से, जिसे गाया है उदित्य नारायण ने, बोल इंदिवर के हैं तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कविता कृष्णमूर्ति और रीना भारद्वाज की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म मंगल पांडे का ये गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं तथा संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म शोल्जर से, जिसे गाया है जसपिंदर निरोला और सोनू निगम ने, बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने।

नो प्रॉब्लम। इस फिल्म का गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है वाजिद, सुजैन डेमिलो और साथियों ने। बोल सब्बीर अहमद की है तथा संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म परिंदा। इस फिल्म का ये गीत बोल खुर्शीद हल्लौरी के हैं तथा संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनवर से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ और साथियों ने। बोल शहीद को आदरी की है तथा संगीत दिया है मिथुन ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म चलो इश्क लड़ाई से। बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म अपना आसमान से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और शान ने, बोल महबूब के हैं तथा संगीत दिया है लेस्ली लिविस ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1,282 कड़ी।

0: शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
1: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए
1: अजीत जी। गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी,
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी,
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी,
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी,
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी,
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम

0: हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ. आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।

0: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
0: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई, अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
0: भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी।
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में

0: अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
1: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
0: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
0: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
0: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल।

0: भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1282 कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म तराजू से, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। बोल समीर के है तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म मासूम से, जिसके गायक कलाकार हैं कुमार सानू और पूर्णिमा। बोल और संगीत दिया है आनंद राज मिलिंद ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म कोयला का ये गीत। बोल इंदीवर के हैं तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से, जिसे गाया है उदित नारायण और पूर्णिमा ने, बोल देव कोहली के हैं तथा संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए, प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने

0: बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed happiness.

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ गज़लों की। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे और अंजलि करवा का, बीड शहर महाराष्ट्र से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बुनियाद का ये गीत।

उम्मीद इस फिल्म के गीत की फरमाइश आई है हमें टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी और डॉक्टर प्रियंका थांदी की।

दोस्तों, आप सुनवाते हैं लाडला इस फिल्म का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।

कसूर इस फिल्म की फरमाइश आई है हमें जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से प्रीति सिंह अवि सिंह और अनूप सिंह की।

अगला फरमाइश हमने लिया है फिल्म तुम मिले से, जिसे सुनना चाहते हैं स्वराज दीप से निशा, सुकन्या और प्रीति।

कार्यक्रम का आखिरी फरमाइश हमने लिया है फिल्म मन से, जिसे सुनना चाहते हैं जोधपुर राजस्थान से रीना सिंह, पंकज सिंह और मानव सिंह।

नमस्कार श्रोताओं, अभी आप फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ

0: काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों

0: शहरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन।
4: चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाया गया अनवर ये दिल है आशिकाना, यारिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुम मिले, मोहब्बते, देसी बॉयस और दिलवाले जैसे फिल्मों के गाने। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

0: सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार।
1: चांद की रोशनी में सपने पलते हैं और ज़िंदगी की राहों में उम्मीद जगती है। दोस्तों, जब हम चांद और आसमान के बारे में सोचते हैं तो ज़िंदगी की वो अनकहीं राहें दिखती हैं जहां हमारे सपने, उम्मीद और आज़ादी का मतलब छिपा है। इसी भावना को लिए सुनिए ये गीत।

दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जो दिल को पहली बार किसी की ओर खींचता है, या वही एहसास है जहाँ हर नज़र में एक जादू है, हर मुस्कान में एक सपना है। जब दिल पहली बार धड़कता है तो ज़िंदगी भी नए रंगों से भर जाती है। इसी प्यार के जादू को बयां करता है ये गीत।

0: प्यार करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ना मिनी रोकरा हमंग इनिरे तका लमक तेलिए मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामंग एलिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्ये निकुबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन हे इनिलहारब ngam staff selection commission tarahoi ren na contact ngam indian navy examination tanit ka nirana ta ful talik ta ku ibhure talui sin alang jinge sel ip ta ta ful sin alang me jinge tanit ka nirana ta ful ngam e admit card me candidates kame tere na ke ta ngam examination nang len ngin na ke tu na eliminate talui fan sum kam ire tak hek sakam kine ta min examination na el ngam website ngam commission https://ssc.gov.in/https://sscer.org/ lamak te ngam deputy secretary RNE an ngi min ka talon hi min ka talon hi tangam recruitment notice tahangal nyu ik tanet anai fan ala Gabriel chinge tanet kai niranai ta ful nelngam official police website ta submission mine online application nelak ta ku ik tanet anai sat ala Gabriel chinge sel ip ta sat sin ala ngo me jinge tanet kai niranai ta ful mine correction mine windows निलक्तकु इफुरे चलिप तमजत्र सियन अलांगो मेजिंगे इरे तक मे कैंडिडेट्स ने के तु इनला हे ने करेक्शन मिने एप्लीकेशन फॉर्म्स गा छ अपडेट मिने डिटेल्स रे हे एक मिनजा नो हो पोस्ट ल मिने प्रेफरेंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस फोटोग्राफ्स त मिने सिग्नेचर्स तनुपता हे इन रे तकोरेन न सबमिटर उनोटेड किन हतन इंडी ल मिने फॉर्म्स मे कैंडिडेट्स नह केयरफुली नहावीर इला हेनरे नंगेज कमिने एप्लीकेशन हे कुन हेनरे तंगम फाइनल सबमिशन मे कैंडिडेट्स ने तह आकप कनुप कॉपी नुप एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नमी चैन दन अप मुनोज मिन इरे तक ने तके तुरे तक नेन मे कैंडिडेट्स नेम करेक्शन गम एप्लीकेशन फॉर्म्स न उन हिंग तक तत्कमे तरे न करेक्शन मिने फॉर्म रे नि तके तु अपॉर्चुनिटी उ अंग नरा आई तही तलिकतन यन में कैंडिडेट्स न हो तुन अरहुम करे न विसिट गम ऑफिशियल अंडमान निकोबार पुलिस वेबसाइट न अपडेट्स रिकॉर्डिंग मिने रिक्रूटमेंट प्रोसेस लमक तिंग हम एसपी रिक्रूटमेंट अनगे मिन का तलोन ही हेक इनसिन हंगरानी महावत कर जोंग नेल केल होय निकुन बनाम ही एम वी रानी लक्ष्मी जो माय बंदर तटिकलीपुर इभुरे इद सट काइंड ऑफ द बुहिन नेल फिनिक्स पेज एटी गा छावान मिन इद फैंसिन अलांग वजिंग इद सट काइंड ऑफ द बुहिन रांग टिकलीपुर सिक माय बंदर अन मिन एल तलाग रंजुश्री विजयपुरम एम भारत सीमा चुलिडिल अंडमान मिन इब द फैंसिन अलांग वजिंग इद हेवर काइंड ऑफ द बुहिन नेल हेड ऑफ गा छावान मिन इभे अंग सकाम इत हेवर कनरो तलाहत नर अंग लिडिल अंडमान नजुश्री विजयपुरम एमी सेंटिनल चु लिडिल अंडमान तकानी को बार इप्त तफुल सिन अलांग चिंगे इत सट कनरो ते बुहे नलिक ने हेड वाफ गछावान मिन इप्त सट सिन अलांग चिंगे इत फेन कनरो तलाहरब नर अंकानी को बार सिक लिडिल अंडमान अन मिन एल दलक रंजुश्री विजयपुरम एमवी कालिखाड चू लिडिल अंडमान कानिकुबार चावरा तेरसा कचाल ननकोरी मागछुआ ताफरा पे अल्दाले ग्रंचु कैम्बल बे इब द फैंसिन अलांग जिंगेट इत सट कनो द बुइ नले न्हेडो वाफ माछावान मिन इब द सट सिन अलांग जिंगेट इत मजुत्र कनो त हतम न रांग कैम्बल बे सक आफरा पे मागछुआ ननकोरी कचाल तेरसा चावरा कानिकुबार तलिडिल अंडमान अनमिन एल्दाले ग्रंचु श्री विजयपुरम अनुनुने मिनका तलोन ही

0: Ngajin tahu hang minit asunir rentin ke. Tikuknya lalu Sydney ahanyoj. Hoi yang ngatel ngang nisin tangamu. Hik inudah canggung ita kasat. Ita fan kainro telah harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल।
2: मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकी नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया।

अभी आप अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह को सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलीर उलगम। बांग्ला कार्यक्रम में आप लोकगीत के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर वार्ता सुनेंगे 5:30 पर।

संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में नमूना घर की पशुपालक महिला श्रीमती निर्मला कोजूर के साथ की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। शाम में बाहर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:20 पर गायक होंगे जगजीत सिंह। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद ले पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक तथा रात्रि 9:45 पर मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाब शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे सुबह 7 बजे। 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान में 7:30 पर साहित्य दर्पण के अलावा आप फिल्मी गीत सुनेंगे। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह और रूप कुमार राठौर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप पंडित वी जी जोग का वायलिन वादन सुनेंगे गीत गाता चल। फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT चित्रलोक कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वानिता वानी। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर आप हरिता वानी कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे जफर हुसैन खान बदायूनी और साथी। कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा। लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा जिसमें लाइव फोन आउट कार्यक्रम, हेलो डियर फ्रेंड्स और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसमें सूचनाओं के अलावा किनियों का गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर बहारों की शाम आप सुनेंगे। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर चर्चा और एक ही संगीत कार के गाने सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम में आप आधुनिक गीत सुन पाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर PA बाला के साथ की गई बातचीत सुनेंगे। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में चारा प्रबंधन संध्या 6 बजे। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे आप सुनेंगे। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद ले पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा रात 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का

सोनू निगम और जसविंदर नरूला को सुनते हैं फिल्म ज्वालामुखी में। देव कोयली और अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने।

उदित नारायण, अमित कुमार, अलका याग्निक और आदेश श्रीवास्तव की मिलीजुली आवाज़ों में सुनते हैं जावेद अख्तर की गीत रचना।

0: गीत आदि श्रीवास्तव का है तथा फिल्म का नाम है अंगारे।
1: एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म माँ का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने। गीतकार हसरत जयपुरी तथा संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे है। लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को शिवानी
1: और मुस्कान का
0: नमस्कार। मुस्कान, हर रोज की तरह आज भी हम अपने कार्यक्रम का आगाज एक सुंदर से विचार के साथ करते हैं। मुस्कान, आज का हमारा विचार है कि दुखों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भीतर जो सांसें चल रही हैं वो भी आपकी अपनी नहीं है। तो बाहर के दुखों को आप अपना

0: क्यों मान रही हैं?
1: बस विश्वास में रहो, उस ईश्वर के सहारे खुद को अपने ईश्वर के चरणों में लगा के रखिए। जो हो रहा है और जो होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि आप उनकी संतान हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक पल में रच दिया। आप उनके ही अंश हैं।
0: बिल्कुल मुस्कान, बेहद खूबसूरत सा विचार। और ये विचार हमें यही बता रहा है कि हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए जिसने इस सृष्टि की रचना की है। और उस पे विश्वास रखो, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आज की इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न।
1: और आज का प्रश्न है, एलोवेरा का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? शिवानी एक बार प्रश्न पुनः दोहरा दे।
0: मुस्कान, आज हमारे किसान साथियों को बताना है कि एलोवेरा का प्रवर्धन कैसे किया जाता है।
1: किसान साथियों, हमारे साथ कार्यक्रम में यूं ही बने रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको कार्यक्रम के तहत अवश्य ही बताएंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, अब हम आपको भेंट कराना चाहते हैं एक पशुपालक महिला से, श्रीमती निर्मला खुजूर, जो नमूना घर की रहने वाली हैं। आइए सुनते हैं उनके साथ की गई बातचीत।

0: निर्मला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: आप क्या क्या करती है बताइए।
1: बकरी मुर्गी पाली हूँ, वो थोड़ा मोड़ा खाने भर का सब्जी उब्जी उगाई।
0: बकरी मुर्गी पालन करती है, तो सबसे पहले बात करते हैं बकरियों की। कितनी बकरियां हैं आपके पास?
1: मेरा पास बीमार होके मर गए ना, अभी दो ही बकरी है।
0: सिर्फ दो बकरी है? अच्छा, इनको रखने के लिए क्या इंतजाम है आपके घर में?
1: घर का बगल में झोपड़ी बनाई हूँ, मचान है, मचान में सोते हैं।
0: मचान की सफाई कौन करता है?
1: मैं ही करती हूँ।
0: अच्छे से साफ रखते हैं?
1: हाँ, ऊपर भी सफाई करती हूँ, नीचे भी अच्छे से।
0: हाँ, खाने की क्या व्यवस्था है बकरियों की?
1: वो खेती में चरते हैं, सुबह शाम गेहूँ देती हूँ।
0: गेहूँ देती है और चरने के लिए छोड़ती है?
1: हाँ, छोड़ देती।
0: उसके बाद पानी, पानी हमारे लिए जैसे हम मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है, वैसे जानवरों के लिए भी पानी की पूरी जरूरत होती है, तो पानी का क्या इंतजाम है?
1: पानी सुबह खोलने का पहले गंजी पानी देती हूँ, फिर दिन को उधर चरने जाते हैं, उधर गड्ढा मड्ढा से पी लेते, फिर आके और गंजी पानी पीते, गेहूँ खाते, फिर बांध देती हूँ।
0: फिर बांध देती है। बकरियों से आपको क्या उत्पाद मिलता है, क्या करती है बकरियों का?
1: बकरा बड़ा होने से बिक्री करते हैं।
0: बकरा बिक्री करते हैं?
1: हाँ।
0: कितने में बिक्री हो जाता है?
1: कभी 10,000-12,000
0: ऐसे करके बिक्री होता है। एक साल में आप कितने बकरे बिक्री करती हैं?
1: 2-3 बिक्री होता है।
0: 2-3 हो जाता है। अच्छा, और उसके अलावा बकरियों से क्या मिलता है? दूध वगैरह निकालती हैं?
1: नहीं निकालती है,
0: क्योंकि बकरी का दूध जो होता है ना, ये दवाइयाँ बनाने के काम आता है। आप लोग दूध नहीं निकालते हैं बकरी का?
1: नहीं निकालते।
0: नहीं निकालते हैं, सिर्फ बकरा बिक्री करते हैं। इनमें कभी कोई बीमारी देखी है आपने?
1: हाँ, देखी है।
0: फिर कैसे उसका उपचार किया जाता है?
1: वो घर में धुआं हुआ करते है, वो ठीक नहीं होने से डिस्पेंसरी जाके वो दवाई वही लेके आके देते, नहीं तो कंपाउंडर लोग को बुला के उस लोग दवाई वही देते।
0: नहीं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बकरी बीमार है, क्या लक्षण दिखते हैं?
1: कभी कभी वो पानी पानी टट्टी करते हैं ना।
0: अच्छा,
1: पानी पानी टट्टी करते, कभी वो चारा नहीं खाते, घास नहीं खाते।
0: अच्छा अच्छा, वही देखते, उससे आपको पता चल जाता है कि बकरी जो है वो बीमार है। कभी आपने वेटनरी से कांटेक्ट किया, मतलब वेटनरी जो है पशु चिकित्सालय, वहाँ लेके गए अपने जानवरों को?

0: लेके जाते हैं, वहां से दवाई वगैरह मिलती है, इंजेक्शन सब देते हैं, दवाई देते हैं बीमार होने पर। अच्छा, वैक्सीन की भी जो है ना ये व्यवस्था है आजकल, अगर आप पहले से उनका टीकाकरण करा देंगे तो आपकी बकरियों में बीमारी नहीं आएगी। कभी आपने कराया?
1: कराते हैं, और साल में इंजेक्शन के लिए जाते हैं ना
0: जी,
1: घर घर जाते
0: जी,
1: वेटनरी वाले घर घर आते हैं, इंजेक्शन देते हैं।
0: आपने अपनी बकरियों को दिलवाया?
1: हाँ, दिलवाई।
0: ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा पशु है आपके पास?
1: मुर्गी है।
0: मुर्गी, कितनी मुर्गियां हैं?
1: बहुत सारे हैं, 25-30 तक।
0: 25-30 मुर्गियां हैं, तो मुर्गियों से आपको क्या उत्पाद देती हैं? अंडा देती है मुर्गी?
1: हाँ, मुर्गी अंडा देती है, अंडा भी बिक्री होता है
0: जी।
1: मुर्गा बड़ा होने से मुर्गा भी बिक्री होता है।
0: अच्छा, एक मुर्गा कितने तक बिक्री हो जाता है?
1: 2-2.5 KG का हो जाते ना
0: जी।
1: फिर एक एक मुर्गा का 1,500 तक हो जाता है। बड़ा बड़ा होने से वजन होता है ना, बड़ा रहने से होता है।
0: जंगली मुर्गा?
1: हाँ, जंगली मुर्गा 1-1.5 हजार का होता है।
0: 1-1.5 हजार में बिक जाता है? तो उसको लेने के लिए ग्राहक जो है वो आपके घर तक आते हैं या आपको लेके जाना पड़ता है?
1: नहीं ना, घर तक आते हैं, घर ही लेके आते,
0: घर से ही ले जाते हैं, तो वो पैसे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने बकरियों में बात की कि बकरियों में बीमारियां हो जाती है, वैसी कोई बीमारी आपने मुर्गियों में देखी?
1: होती है।
0: फिर उसका इलाज किस तरह किया जाता है?
1: वही वेटनरी से दवाई लेके आके पिलाते हैं।
0: अच्छा, तो ठीक हो जाती है?
1: ठीक हो जाते हैं, कोई कोई मर जाते हैं,
0: कभी कभी मर जाती है तो नुकसान हो जाता है।
1: नुकसान हो जाता है।
0: मुर्गियों से अंडे भी आप लेते होंगे?
1: हाँ।
0: कितने अंडे एक सप्ताह में आ जाते होंगे?
1: बराबर तो सब दिन नहीं देते, 25 तक हो जाते।
0: 25 तक हो जाते, फिर उन अंडों का क्या करते हैं आप?
1: बिक्री करते हैं, आधा को कुड़ बैठा के फोड़वाते।
0: अच्छा अच्छा, तो एक अंडा कितने रुपए में बिकता है?
1: 20 रुपए में।
0: 20 रुपए में बिकता है। घर से आके ये भी ले जाती है?
1: घर ही से ले जाते।
0: अच्छा अच्छा, दोनों ही आपके लिए आय का एक अच्छा साधन जो है वो बनी हुई है, मतलब आपको गुजारे लायक जो है वो इनकम इनसे मिल जाती है।
1: मिल जाती।
0: इसके अलावा और क्या करती है?
1: सब्जी डालती हूँ।
0: सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां हैं?
1: लोबिया है, करेला, लौकी।
0: अच्छा अच्छा, सब्जियों का जो खेत है उसकी देखरेख आप ही करती हैं?
1: मैं भी करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी करते हैं, दोनों मिलके करते हैं।
0: आप लोग मिल बांट के करते हैं। तो अभी आपके खेत में कौन सी सब्जियां लगी हैं?
1: अभी लोबिया है, करेला है, लौकी है, और फ्राई भाजी सब है।
0: अच्छी सब्जियां हो गई है। तो ये सब्जियां जब पूरी तैयार हो जाएंगी तो फिर इनको आप क्या करती हैं?
1: नहीं ना, बिक्री नहीं करते हम लोग, घर ही में खाते, घर में भी खाते और ज्यादा हो जाने से बिक्री भी करते हैं।
0: तो बिक्री करने के लिए आपको आपके गांव में ही ग्राहक मिल जाते हैं या कहीं और आपको लेके जाना पड़ता है?
1: जिसको सब्जी नहीं मिलता उस लोग जाते हैं, घर ही में ले लेते हैं।
0: ले लेते हैं तो उसके अच्छे पैसे देते हैं आपको?
1: देते हैं।
0: तो सब्जियों से भी आपको मतलब फायदा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा, सब्जियों में भी जैसे कि आप जानवरों की बात की, उसी तरह से सब्जियों में भी कभी कीड़ा या बीमारी का प्रकोप जो है वो हो जाता है। हाँ। तो फिर आप कैसे उसको दूर करती हैं?
1: दवाई लेके आते
0: हैं, एग्रीकल्चर से दवाई लाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं।
1: छिड़काव करते हैं
0: तो वो काबू में आ जाता है। इसके अलावा और क्या करती हैं आप?
1: नारियल सुपारी पेड़ है।
0: कितने पेड़ है?
1: नारियल पेड़ों का 4-5 पेड़ है।
0: और सुपारी का?
1: सुपारी का भी क्या बोलेगी मैडम, धूप कला में ना सूख जाता जमीन और मर जाता, नहीं तो बहुत वो पेड़ था,
0: पहले था लेकिन अभी नहीं है।
1: अभी नहीं।
0: अच्छा, तो आप उसको ठीक कराइए ना, आप कैरी में जाइए या कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, वो लोग आएंगे वहां से और आपकी मिट्टी की जांच करेंगे और है ना उसको वापस उपजाऊ बना दिया जाता है। तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बताइए तो वो जो सूखे वाले पेड़ हैं वो दोबारा से उपजाऊ हो जाएंगे, फिर से फल देने लग जाएंगे, तो नारियल और सुपारी भी फिर आपको फायदा देंगे है ना। तो ये भी आप दोबारा कर सकती हैं। खैर निर्मला जी, आपने इतनी बातें बताई, आपने बताया कि आप पशुपालन और सब्जियों की खेती करती हैं, इसके साथ साथ नारियल और सुपारी के बगीचे भी आपके पास हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और मुनाफा कमाती रहें। आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी बातें हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।

0: अभी आपने एक पशुपालक महिला श्रीमती निर्मला खुजूर से की गई बातचीत सुनी, जो नमूना घर की रहने वाली हैं।
1: और मुस्कान, इस बातचीत के बाद अब हम अपने किसान साथियों

0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: किसान भाइयों, अब हम आपको ये जानकारी दे रही है जिसका विषय है राष्ट्रीय बांस मिशन। तो साथियों, लीजिए राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM के संदर्भ में ये जानकारी।

0: बेहद खूबसूरत सा गीत, हमारे किसान साथियों ने इसका आनंद जरूर लिया होगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले।

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना और बांस उद्योगों को मजबूत बनाना है। ये योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, खेती के लिए अच्छी नस्ल के बांस के पौध उपलब्ध कराना, बांस से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर, अगरबत्ती, बास्केट बोर्ड आदि को विकसित करना, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगवाना, बांस के उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना। इस योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ हैं बांस के पौधों पर सब्सिडी। सरकार बांस के पौधों को लगाने पर 40-60% तक की सब्सिडी देती है। पौधशाला या नर्सरी में सहायक अगर कोई किसान या समूह बांस की नर्सरी खोलना चाहता है तो सरकार आर्थिक मदद देती है। खेती की लागत में भी सरकार मदद देती है, जैसे गड्ढा खुदवाना, खाद डालना, पौधरोपण, सिंचाई सिस्टम इत्यादि। इन सब पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। जैसे सरकार फसल को खेतों से लेकर बाजार तक पहुंचाने में पूरा समर्थन देती है, जैसे कटिंग, सुखाना, बीडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, बिक्री इत्यादि। प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा, किसानों को इसके तहत सिखाया जाता है कि कौन सी बांस की किस्में कटाई में अच्छी होती हैं और बांस को कैसे उगाएं, इसे कैसे प्रोसेस करें और इससे कैसे अधिक लाभ कमाएं। सरकार द्वारा बांस प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत अगर कोई किसान या समूह बांस का सामान बनाने की मशीन लगाना चाहता है, जैसे अगरबत्ती, बांस फर्नीचर, बांस प्लाईवुड, बांस टोकरी इत्यादि, तो सरकार 35-50% तक की सहायता देती है। और साथियों, इस योजना का लाभ सभी छोटे बड़े किसानों, किसान समूहों, कृषि उत्पादक संगठन, महिला समूह, आदिवासी किसान एवं सरकारी समितियां उठा सकती हैं। साथियों, इसके तहत सरकार द्वारा बांस लगाने का तरीका सुझाया गया है। इसमें प्रति एकड़ पौध संख्या 800 से 1200 पौधे तक होती है। दूरी लगभग 5x5 मीटर या 6x6 मीटर तक होनी चाहिए। और साथियों, इसके रोपण का सर्वश्रेष्ठ समय मानसून के समय होता है। पहली कटाई 3 से 4 साल के बाद। आंकड़े बताते हैं कि इससे किसानों को 1 एकड़ में सालाना 1 लाख से 2.5 लाख तक की आय मिल सकती है, और ये निर्भर करता है बांस की फसल और उसकी किस्म पे। इस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार से है। पौधे खरीदने पर सरकार 40-60% तक सब्सिडी देती है, जबकि नर्सरी खोलने पर 1-5 लाख तक, ड्रिप सिंचाई के लिए 55-70% तक और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 35-50% तक, बांस आधारित उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 50-65% तक की सब्सिडी दी जाती है। साथियों, इसके लिए आवेदन का तरीका है कि अपने क्षेत्र के राज्य कृषि विभाग से फॉर्म ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। साथ ही इसका ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, किसान पंजीकरण नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। और इस योजना में सबसे अधिक लाभ मिलते हैं छोटे किसानों को, और जहां बरसात अधिक होती है, आदिवासी क्षेत्रों में जहां बंजर जमीन है और जहां लकड़ी उद्योग होते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM के तहत सरकार की इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि सभी छोटे बड़े किसानों, आदिवासी क्षेत्रों में और जहां बांस उद्योग की संभावनाएं अधिक हैं, वहां इस उद्योग से अधिक लाभ मिल सके।

0: अभी आपने एनबीएम यानी राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में ये जानकारी हासिल की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: अब हम बताने जा रहे हैं आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर।
4: हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था आपसे ये प्रश्न, और प्रश्न यूं था, एलोवेरा का प्रवर्धन कैसे किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, एलोवेरा का प्रवर्धन अंकुर यानी सकर से किया जाता है। लगभग 3 से 4 माह पुराने अंकुरों जिनमें 3 से 4 पत्तियां हो और 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे हो का इस्तेमाल रोपण के लिए किया जाता है।
0: मुस्कान, हमें लगता है कि हमारे सभी किसान साथियों ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुना देते हैं आपको कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत।

0: इसी के साथ बातों और जानकारियों की किसानवाणी की ये संध्या यहीं पर होती है मुकम्मल। अब मुलाकात होगी अगले अंक में
1: कुछ और नई बातें और जानकारियों के साथ। हम मिलेंगे आपको अगले किसानवाणी कार्यक्रम में।
0: तब तक के लिए
1: रखें अपना ख्याल,
0: और फिलहाल के लिए शिवानी
1: और मुस्कान को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनते हैं फिल्म बाबुल का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने तथा संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

लीजिए अब सुनिए फिल्म आ अब लौट चले का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत रचना समीर की तथा संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आप कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में फिल्म भागम भाग का ये गीत सुन रहे थे। गीत समीर के तथा संगीत प्रीतम का था। लीजिए अब सुनिए फिल्म धूम 2 का ये गीत, जिसे गाया है केके और अलीशा चिनॉय ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्रेया घोषाल का गाया फिल्म अनकहीं का गीत, गीतकार समीर, संगीत प्रीतम।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:20 पर गायक होंगे जगजीत सिंह। 7:30 पर युवाणी में देश की शान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष कार्यक्रम।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे। संदेश आते हैं। ये तो थे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल के कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल सुबह पहली सभा में 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिस्ट में जानेंगे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाब शीर्षक पर 6:15 पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे सुबह 7:00। 7:15 पर देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद लेंगे। इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भोले बिसरे गीत। 7:30 पर साहित्य दर्पण कार्यक्रम में गजलें आप सुनेंगे शेख मकसूद आलम से, साथ ही कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह और रूप कुमार राठौर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 9:00। ये तो थे कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। असम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मजबूत तैयारियां की हुई है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पी उमर ने विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नौका संचालन और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉ सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो

शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा को बधाई देते हुए कहा है कि डॉक्टर सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो पहले लगभग 36,000 टन प्रतिदिन था, अब बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हो गया है। उन्होंने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक व्यापार सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी है। जहां कई देशों में हाल के महीनों में ईंधन की भारी कमी और कीमतों में तेज वृद्धि देखने को मिली है, वहीं भारत में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि देश में कच्चे तेल और एलएनजी का 60 दिनों का बफर स्टॉक और एलपीजी का 45 दिनों का भंडार उपलब्ध है, जिससे किसी भी तत्काल आपूर्ति संकट की संभावना नहीं रहती। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से एलपीजी के स्थान पर एलएनजी के उपयोग को बढ़ाने तथा स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जाँच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, मुख्य सचिव से मुलाकात और नौका संचालन दिशा निर्देश। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नव निर्वाचित अध्यक्ष पी उमर एवं उपाध्यक्ष आशा मांझा हलदार ने पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी के साथ आज मुख्य सचिव डॉ चंद्रभूषण कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने जिला परिषद को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने समुद्री एवं जिला प्रशासन के समन्वय से सभी नौका संचालकों और बोट मास्टर्स से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि सभी नौकाएं समुद्र यात्रा के योग्य हो, उनका नियमित रखरखाव किया जाए तथा निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाया जाए। आपदा प्रबंधन के निदेशक ने नौका संचालन के दौरान दिशा निर्देशों का पालन के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी मानते हुए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। द्वीप समूह के सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा 3 दिवसीय मूलभूत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 13 से 15 मई तक राजधानी श्री विजयपुरम स्थित गोलघर लिंक रोड के आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण कक्ष में कल सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार विभागों में आपदा पूर्वाभ्यास आयोजित कर तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में जहाजरानी सेवा निदेशालय ने कल

राजधानी श्री विजयपुरम स्थित मरीन डॉकयार्ड में सुनामी आपदा पूर्वाभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास DSS के नोडल अधिकारी की निगरानी में संपन्न हुआ, जिसमें मरीन डॉकयार्ड के सभी कर्मचारियों तथा परिसर में कार्यरत विक्रेताओं ने सक्रिय भागीदारी दी। आपदा पूर्वाभ्यास के दौरान कुल 642 लोगों को सुरक्षित रूप से निर्धारित शेल्टर पॉइंट तक पहुंचाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 24 मई को नई दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समारोह

शेल्टर पॉइंट तक पहुंचाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 24 मई को नई दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार देशभर से 500 से अधिक जनजातीय समुदायों से लगभग 1.5 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कांग्रेस नेता एवं गुप्तापाड़ा की पूर्व उप प्रधान माया देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे 78 वर्ष की थी। ANTCC के अध्यक्ष रंगलाल हलदार, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जुबैदा बेगम और पूर्व महिला कांग्रेस की नेता शांता लक्ष्मण सिंह ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से चल रही है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 मई है। विभाग ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कल से 19 मई तक आवेदन पत्र में संशोधन हेतु करेक्शन विंडो उपलब्ध रहेगी। संशोधन करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने की सलाह दी गई है। सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी। गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मजबूत तैयारियां की हुई है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पी उमर ने विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नौका संचालन और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में भारी वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को 15 से 18 मई तक के मौसम संबंधी चेतावनी में कहा गया है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी स्वराजदीप बृहस्पतिवार 14 तारीख को सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान का लदान व कल 13 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच किया जाएगा, जबकि यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य जहाज रवानगी के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 14 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए एमवी भारत सीमा 14 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 8 बजे लिटिल अंडमान से ही श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार की यात्रा पर 16 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 17 तारीख

को शाम 4 बजे कार निकोबार से छोड़कर लिटल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा के स्थान पर अब एमवी कालीघाट 14 तारीख को सुबह 7 बजे लिटल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकोरी माकाचुहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 17 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से छोड़कर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान सिंधु नैनकोरी और कचाल होते हुए कैमल बे जाने के लिए 19 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 21 तारीख को सुबह 6 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6 बजे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी बाराटन कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी हडवे कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल शाम 4:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी रानीचंगा कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 14 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 14 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृतियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 1120319223200 और 0319223200। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गजलें। तो लीजिए पहले पेश है जगजीत सिंह का गाया अख्तर नाज़मी का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, केवल साधन होने से या बड़े सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपके भीतर अटूट साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप सीमित संसाधनों में भी आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, आज 12 मई है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति नर्स। नर्सिंग का पेशा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक नर्स अस्पताल के उस तंत्र की रीढ़ होती है जहां डॉक्टर इलाज लिखते हैं, लेकिन इस इलाज को ममता और देखभाल के साथ मरीज तक पहुंचाने का काम नर्स ही करती है। नर्सों को सिस्टर कहा जाता है, जो

0: उनके सेवा भाव और मरीजों के साथ उनके पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। नर्स का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। वे रात दिन जागकर मरीजों की निगरानी करती है, उनकी तकलीफों को सुनती है और दवाइयों के साथ साथ अपने धैर्य से उन्हें मानसिक संबल प्रदान करती है। एक बीमार व्यक्ति जब दर्द से जूझ रहा होता है, तब नर्स की एक मुस्कुराहट और सहानुभूति भरे शब्द उसे जल्द स्वस्थ होने की प्रेरणा देते हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अग्रिम पंक्ति में रहकर लोगों की रक्षा की। वास्तव में नर्सें समाज की वह अनमोल कड़ी है, जिनके बिना स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना भी असंभव है। हमें उनके कठिन परिश्रम और त्याग का सदैव सम्मान करना चाहिए।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षगांठ पर। भारत में रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह देश की संस्कृति, शिक्षा और जन जागरण का सशक्त स्तंभ भी बना। आकाशवाणी ने अपने 90 गौरवशाली वर्षों में करोड़ों भारतीयों के जीवन को आवाज दी है। गाँव से लेकर महानगरों तक आकाशवाणी ने समाचार, संगीत, साहित्य और सामाजिक संदेशों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह केवल सूचना का साधन नहीं, बल्कि भारतीय भावनाओं

दोस्तों, आकाशवाणी की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत 1936 में हुई थी। उस समय रेडियो सीमित संसाधनों के बावजूद लोगों तक समाचार और ज्ञान पहुंचाने का माध्यम बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया। किसानों से लेकर कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रसारण और महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों ने समाज को नई दिशा दी। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि ने देश के हर वर्ग को प्रेरित किया और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। दोस्तों, आकाशवाणी के सांस्कृतिक योगदान का उल्लेख भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक गीत, कवि सम्मेलन और नाटक जैसे कार्यक्रमों ने देश की कला और संस्कृति को संरक्षित करने का महान कार्य किया। उनके प्रसिद्ध कलाकारों को पहचान दिलाने में भी आकाशवाणी की अहम भूमिका रही। पुराने समय में परिवार एक साथ बैठकर रेडियो कार्यक्रम सुनते थे, जिससे आपसी प्रेम और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता था। आकाशवाणी ने भारतीय भाषाओं और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

दोस्तों, आधुनिक युग में आकाशवाणी के बदलते स्वरूप की चर्चा करना आवश्यक है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, एफएम चैनल और ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से आकाशवाणी नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। तकनीक के विकास के साथ साथ इसने स्वयं को समय अनुकूल बनाया है। समाचारों को विश्वसनीयता और कार्यक्रमों की गुणवत्ता आज भी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आपदा और संकट के समय में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और त्वरित जानकारी पहुंचाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।

दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष भारत की संचार यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह संस्था आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बदलते समय में भी इसकी गरिमा, विश्वसनीयता और सांस्कृतिक महत्व कम नहीं हुआ है। आकाशवाणी ने देशवासियों के दिलों में जो स्थान बनाया है वह सदैव अमिट रहेगा। हमें इस गौरवशाली संस्था की उपलब्धियों पर गर्व है और आशा है कि यह आने वाले वर्षों में भी ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाती रहेगी।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आशा भोसले के गाए फिल्म सावन की घटा के एक गीत के साथ। एसएच बिहारी के बोल को शुरू में पिरोया है ओपी नैयर ने।

लीजिए अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की गीत रचना, जिसे गाया है मुकेश ने। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार का गाया इंदिवर की गीत रचना, संगीत कल्याण जी का है तथा फिल्म का नाम है सफ़र।

कल आज और कल इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। गीत हसरत जयपुरी की तथा संगीत राहुल देव बर्मन का।

कल आज और कल इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। गीत हसरत जयपुरी की तथा संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है, सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP है, और माइलेज भी बढ़िया है 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है, शर्तें लागू।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए फिल्म खेल खेल में के गीत को अब हम आपको सुनवाते हैं। गीत गुलशन बावरा का है तथा संगीत RD बर्मन का।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म मुनीम जी का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर ने, संगीत SD बर्मन का तथा गायक है किशोर कुमार।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन के लिए कुल पद है 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ग्रुप सी में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66 पद, 65 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ग के लिए 7 पद, भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के लिए 1 पद होगा। कांस्टेबल बैंड्समैन के लिए कुल पद है 4, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए,

0: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पद रखा गया है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 10, अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, 4 पद ओबीसी वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पद रखा गया है। फॉलोवर कारपेंटर एग्जीक्यूटिव केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर कुक एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 13, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक एक पद है। फॉलोवर टेलर एग्जीक्यूटिव कुल पद है 1 जो अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर बार्बर एग्जीक्यूटिव कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोवर वाशरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2026 को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है। 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
4: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल

0: अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है।

0: से इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर

0: के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 만탄.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आशुतोष जी, जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
2: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि वो पूरा होगा।
1: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम

0: राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
2: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो जो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: और 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है। और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
2: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है। और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
0: दीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
2: 2-3 बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें, रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं।

0: गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
1: जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिसे कि आपने भी जैसे बताया कि
0: जी,
1: बहुत
0: जी,
1: सारे
0: जी,
1: कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे इस साल, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे, राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे, जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओज हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटर्निंग वाल्व वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
0: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा, तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वो कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा, और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांवों का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं, गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल, अब

0: अगर कोई गांव का एक मजदूर आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है,
1: जी
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, हम ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
1: जी क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आरंभ होता है व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम।

कार्यक्रम संदेशे आते हैं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और लेते हैं पहला व्हाट्सएप, जो हमें नमूना घर से परमजीत कौर, रमनदीप कौर, सुखदेव, हरमीत, पूजा और मिटू ने भेजा है। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इम्तिहान का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है फैज अनवर ने तथा संगीत अन्नू मलिक का है। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर ये गाना।

लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म मुद्दत का ये गाना। पसंद करने वाले श्रोता है हेडो लिलीपुर से अभिषेक और दिव्या। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

फिल्म रंग के गीत को गाया है अलका याग्निक और सुकुमार सानू ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले श्रोता है जंगली घाट से गीता, सावित्री, रितिका और तनिष्क। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

काबिल बी से नितेश राव सुनना चाहते हैं फिल्म गुनाह का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक भागों में भारी वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मछुआरों को 15 से 18 मई तक मौसम संबंधी चेतावनी में कहा गया है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जिसके कारण समुद्र अशांत रहेगा। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। मौसम, ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 और 17 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 45 सेकेंड हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।